त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्व सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत शत्रधारी शत्रिपत शैल रूप शेतनाथ शौनी कर छाया बर शत्रिपत गाइया विश्वनाथ विश्वं पर वेदनाथ बाला कर बाजीगर बाण तारी बंदन बताइया

नाचत फिरत मोर बादर करत घोर दामनी अनेक भाव करियो करत है। चंद्रमा शीतल न सूर स्थित पत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्वी आद ब्रह्मा से न वेद चारी सनत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फिर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मार विषण कित वेद यो पुराण कित सिमृत समूहन के होय होय बिताए है। मोन दी मदार कित्ते अश्विनी कुमार कित्ते अंशावतार कित्ते काल बस भय है। पीर पिकम्बर कित्ते गाने न परत इत भूमि हित हो के फिर भूमि ही मिलाए है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोस लो चलत है। बड़े बड़े राजन के दापत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीप औदलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है। दार से दिल्ली सर दुर्योधन से मानधारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिज दे करे अनेक तोप जी कपट भेष पोष दी अनेक दानि वावत है। शीस कहो कह भयो मल जो पिकाड़त अनेक दंड सोत न डंडौत अस टांग अथ तीस कहो कहाँ भयो रोगी जो पे डर रहे उर्द मुख मन तेना मुंड ने हो रायो आदेश कहो कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश कहो। शीस पट कत जाके कान मैं खजूरा दस मुंड छट कत मित्र पुत्र हूँ के सोख सौ आंख को चरैया फल फूल को भछैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न बोक सौ कहाँ भयो भेड़ जो घसत शीस वृक्षन सो माटी को बछैया बोल पूछ लीजे जोग सौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सौ। नाचुई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करो करत है। एक पाए ठंड सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठोर बास करे काग और चील देश देश विचरत है। ज्ञान के बिहीन महादान में न हुजलीन भावना यकीन दीन कैसे के तरत है। जैसे एक स्वंगी कहूँ जोगी या बैरागी बन कब हूँ संन्यास वेश बन के दिखावई कहूँ पौन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की कुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पैर लगावे बारी कहूँ दंडधारी हो के लोगन भ्रमावई कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार की दर पुकारे पर शीत काल कुंचर ओगत हा अनेक दा पुकार ही कहा भयो जो पे काल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोर टाक उठारन सो मार ही कहा भयो फांसी डार बूढ़ जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक धार मूड़ ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही। ताप के सहित जो पे पाइये अताप नाद ताप ना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए तो जो पे पायत अजाप देव भूत ना सदीव तुही उचरत है। नभ के उड़ित जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल बो करत है। आग में जर तिगत

करता करीम सोई राज करहिम ओई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो एक ही किसेव सब ही को गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहु राम सीत सोई पूजाओ निवाज ओई मान सब एक पया नेक को भ्रमाओ है देवता देव जच गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेष को प्रभाव है एक नैन एक कान एक देह एक बान खाक बाद आतस ओ आप को रलाव है अल्लाह अफेक सोई पुराण यो कुरान ओई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाव है जैसे एक आग ते कनु का गोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाहेंगे जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है दूर के कनु का फिर दूर ही समाहेंगे जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पानी के तरंग सब पानी ही कहेंगे तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हो ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे केते कछ मच केते उनको करत भच केते अच वच हो सपच उड़ जाएंगे केते नब बीच अच पच को करेंगे भच केत प्रत्यच हो।

तेज में अतेज जैसे तेज लीन ताहि ते उपज सब ताहि में समाहिंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग वासी कित मदीना मक्का निवासी कितक उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुअ पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घास हारे चंदन लगाए हारे चुआचार पूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मटली पहारे भीतन लगाए हारे छापसी गाए हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित तपन

देखं न मोहं न क्रोहं न द्रोहं न द्वैखं न कर्मं न वर्मं न जन्मं न जातं न मित्रं न शत्रुं न पितरं न मातं न नेहं न गेहं न कामं न धामं न पुत्रं न मित्रं न शत्रुं न भामं लेखं गवेखं जोनि स्वरूपं।

न धर्मं न वर्मं न धर्मं न साके न वर्मं न चर्मं न कर्मं न वाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आदरूपे नमो आदरूपे। कहूं गंज के मंज के भरम भूले, कहूं रंग के राज के धर्म लूले, कहूं देश के वेश के धर्म धामे, कहूं राज के साज के बाज तामे, कहूं अक्षर के पशर के सिद्ध साधे, कहूं सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लाधे, कहूं अंग के रंग के संग देखे, कहूं जंग के

देह दोखं कहूं औखदी रोग के शोक सोखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानि कहूं जक्ष गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी सात की तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूमि की भुगत मैं भरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जक्ष विद्या धरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं सृष्ट की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम बानी कहूं कोक की काव कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र बानी कहूं छुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टा चार चित्रं स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के गीत गावे कहूं शुद्ध सेखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं राज रीत

कहूँ नागवानी कहूँ गारडू गूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कहूँ वीर विद्या भूतंग प्रभा हो कहूँ चल छाला धरे छत्रधारी कहूँ राज

अनभूत तेज अंश जगाद करता सदीव हरता सनाद आसन अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धर्म। जय शत्र मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र ब्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं ब्योतबान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चिहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम धाम नहीं।

शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अग्नहोत्र कहूँ तीर्थ धरम कई देश देश भाखार टंत कई देश देश विद्या पढ़ंत कई करत बांत बांतन विचार नहीं नायक दास पायत न पार कई तीरथ तीरथ भरमत सो भरम कई यज्ञ होत्र कई देव करम कई कर्त वीर विद्या विचार नहीं तदव देश देखे मुरार कहूँ राज रीत कहूँ जोग धर्म कई सिमृत शास्त्र दुचरत सो करम न्योली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मुख को बखान कहूँ कर्त ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ बिरज चार कहूँ कर्त जच गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ कर्त सास सिमृत उचार कई भजत एक बग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देशन उदास कई जल निवास कई यज्ञ ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जोग कल्पंग प्रजंत नहीं तदव दास पायतन अंत कई कर्त कोट विद्या विचार नहीं तदव दिष्ट देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं परत पान बहु कर्त हो मर जग

दीन जमीन जमा जे रचिंग सर्व मकीन मका जे राग न रूप न रेख रुखंग जे ताप न साप न शोक सुखंग जे रोग न शोक न भोग भयंग जे खेद न भेद न छेद छयंग जय जात न बात न मात पितंग जे रचयंग छत्री छत्र शितंग जय राग न रेख न रोग भड़ंग जे द्वैख न दाग न दोख गणंग जय अंड ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रे सिंधु रूपिंद नकिंद नकंग श्रे जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव देव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंड सेतज उद भुजंग की ये देव देव सराध पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न जोत जुतंग जे तात न मात न ब्रात सुतंग जे रोग न शोक न भोग भुवंग जे जंप है किन्नर जछ जुवंग नर नारण पुंसक जाहि किए गण किन्नर जछ भुजंग दिए गज बाज रथादिक पाद गणंग भवभूत भवेख भवान तुवंग जय अंडज सेतज जीर रजंग रज भूमा काज पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भुव मेरा आकाश निवासितंग रज रोज एकादेश चंद्र वृतंग दुत चंद

है, समस्त सिद्ध वृद्ध दा सदीव सर्वसात है, अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धदा, अनूप रूप स्वरूप है, अचिज तेज मानिए, सदीव सिद्ध शुद्धदा, प्रताप पत्र जानिए, नराग रंग रूप है, नरोग राग रेक है, अधोग दाग दग है, अभूत ब्रह्म फेक है, न दात मात जात है, न पाद चिहन वरण है, अदेक शेक फेक है, सदीव विश्वभरण है, विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेख विश्वभरण है, जिमी जमान के बिके सदीव करम भरम है, अद्वेग है, अभेग है, अलेख नाथ जानिए, सदीव सर्वठोर में विशेख आन मानिए, न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई, पुराण यो कुरान नेत नेत कै बतावई, न करम में न धर्म में न भरम में बताइए, गंजे आद देव है कहो सो कैस पाइये, जिमी जमान के बिके समस्त एक जो

न पात है, न मंत्र है, न मित्र है, न दात है, न मात है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साथ है, न दोक है, न दाक है, न द्वैग है, न देह है, न सिंह है, न स्यार है, न राम।

न छल है, न छिद्र है, न छल को मिलाव है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है, न राग है, न रंग है, न रेग है, न रूप है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को बनाव है, न छल है, न छिद्र है, न छाया को मिलाव है, न राग है, न रंग है, न रूप है, न रेख है, न कर्म है, न धर्म है, अजन्म है, अभेक है, न तात है, न मात है, अख्याल खंड रूप है, अछेद है, अभेद है।

न सीत है, न सोच है, न घ्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैख है, न भेक है, न दुई है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदीव दयाल रूप है, अगंज है, अभंज है, अभरम है, अभूत है, अछेद छेद है, सदा गंज गंज गंज है, अभूत अभेक है, बली अरूप राग रंग है, न द्वैख है, न भेक है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है, न पात है, न चित्र

गजाधपि नराधपि करंत सेव है सदा सिदस्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा अगस्त आद जे बड़े तपस्तपे विषेखी है बेअंत ब्यंत ब्यंत को करंत पाठ पेखी है अगाध आद देव की है नाद बात मानी है न जात पात मंत्र मित्र शत्रु स्नेह जानी है सदीव सर्वलोक के कृपाल ख्याल।

रूप राग ना रेख रंग ना जन्म मरण विहीन आदनात अगात पुरख सो धर्म करम प्रवीण जंत्र मंत्र तंत्र जाको आद पुरख अपार हस्त कीट बिखे वजह सब ठोर में निर्धार जात पात ना तात जाको मंत्र मात ना मित्र सर्व ठोर बिखे रमे जय चक्र चहन ना चित्र आद देव उदार मूर्त अगाद नात अनंत आद अंत ना जानिए अभिखाद देव दुरंत देव भेव न जान ही जे मरम वेद कतेब सनक औसन के संदर पावही न हसेब जाछ किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्गा पार नेत नेत पुकार ही शिव सकर ओम खुचार सर्व सपत पतार के दर जाप ही जह जाप आद देव अगाद तेज अनाद मूरत अताप जंत्र मंत्र न आवही कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठोर रहे ओ विराज धिराज राज प्रवीन जाच कंद्रव देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय माहे वैसनं के बिखे विराजे शूद्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म सेक स्वरूप रात दिवस न मध उर्द न भूमा का सनूप जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जातरण देव पूजा घोर के न अधीन सर्व सबद पतार के दर जानिए जह ज्योत शेष नाम स हंस फन नह नेत पूर्ण होत सोत सोत हटे सभा सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाए किन्नर गरब पड़त पड़त थके महागब गढ़त गाढ़ अनंत हार हार कहे सबू मिलन।

दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोबिंद, मित्र पालक शत्रु गालक दीन दयाल मुकंद। अघो दंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल, दुष्ट हरनंग पुष्ट करनंग सर्व के प्रतपाल। सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के अनकाम, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम। सर्व भुगता सर्व जुगता सर्व करम प्रवीण, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व करम अधीन। सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार, दुष्ट हर्ता विश्व भर्ता आदि रूप अपार। दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देवा खंड, भूमका जले थले मह जपत जाप अमंड। श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सवचार, आदि देव अपार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार। अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र, वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र। जन्म जाता कर्म

हर हर थके सबे नहीं पाइये तह पार। नारद आदक वेद व्यासक मुन मान अनंत, ध्याय ध्याय थके सफय कर कोट कष्ट दुरंत। गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर अपार, सोद सोद थके महासु

को आत्मा स्वरूप है, कहाँ सृष्टि को विचार, कौन धर्म को कर्म है, कहो सकल विस्तार दोहरा। कह जी तब कह मरण है, कवन सुरक कह नरक, को सुगुड़ा को मूढ़ता, कहाँ तरक अवतरक दोहरा, को निंदा जस है।

वृत्ते चरासुर मारण पति उदाहरण नरक निवारण गूढ़ गते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते जय जय होसी मैं खासुर मर्दन रमक बर्दन छत्र चिते आसुरी बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप अते चंडासुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र विदुन सन महक मथे दान प्रहारण नरक निवारण नदम उदारण उर्ध अधे जय जय होसी मैं खासुर मर्दन रमक बर्दन आदि वृत्ते डावरू डवंके पर बवंके भुजा फरंके तेज बरंग लंकुड़िया फांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायुध चमके भूखण दमके अथित चमके फुंक फनंग जय जय होसी मैं खासुर मर्दन रमक बर्दन दैत जिनंग चंडासुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून किते दामनी दमंकण धुजा फरंकण फणी फुंकारण जोध जिते सरधार विपरखण दुष्ट प्रकार खण पुष्ट प्रहर खण दुष्ट मथे जय जय होसी मैं खासुर मर्दन भूमा कासल उर्दाधे दामनी प्रहासन सुषभ निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गुड़।

चाचर्चम कारंच छुरहारण धूम धुम कारण द्रप मथे दाढ़ी वृदंते जोग जयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज प्रतेजन अष्टभुजे जय जय हो सीमकासुर मर्दन भरम विनाशन धर्म धुजे गुंगुरु घमंकण शास्त्र झमंकण फणियर फुंकारण धरम धुजे अष्टाड प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे अगमथा हे एक वृते जय जय हुसी मै खासुर मर्दन आद कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरू कुमारे अधम उधारे नरक निवारे याद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण वितल तले जय जय हुसी सब ठौर निवासन बाये पताल आकाशन ले संकटी निवारण नधम उदाहरण तेज प्रकरखण तुंद तपे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती याद अनाथ अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जीवे जय जय हुसी सत्र प्रकरखण आद अनिल अगाध अभे चंचला जखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उदारे तूर भुजे दामनी दमंगे के हर लंके आद तंके क्रूर कथे जय जय होसी रक्ता सुरखंडन सुंभ चक्रतन सुंभ मथे बारज बिलोजन वृतन विमोचन सोज बिसोचन कौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरना से शुभ्र सुभा से दुष्ट ग्रसे चंचला ब्रांगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय हुसी मैं खासुर मर्दन आद अनाथ का दूरधंग घंट का बिराजे रुण झुन बाजे भ्रम बाजे सुनत सुरंग को किल सुन लाजे किल बिक भाजे सुखो उपराजे मध्य उरंग दुर्जन दल दज्जे मंथन रिझे सब न भज्जे रोहुरनंग जय जय हुसी मैं खासुर मर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग चाचरी प्रचोदन दुष्ट विरोधन रोष रोदन क्रूर वृते धूमराज विदुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विदुंसन शुद्ध मते जालपा जयंती शत्रु मथंती दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय हुसी मै खासुर मर्दन आद जुगाद अगाध कते खत्रियाण खतंगी अभय भंगी आद अनंगी अगाध गते बृडलाज बिहंडन चुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृते सुर नर प्रतिपारण पति दो दारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय हुसी मै खासुर मर्दन विश्व विदुंसन श्रेष्ठ करे दामनी प्रकाशे उन्तन नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकरखण सर्वर वरखण दुष्ट

रक्तासुर मर्दन चंड चक्र दंदान वर्डन बिदाल बधे सरदार विपरखन दुर्जन धरखन अतुल मरखन धरम धुजे धूमराज विदुंसन सोणत चुनसन सो।

दीनन की प्रतपाल करें नित संत उबार गनी मन गारे पछ पशु नक नाग नरा देव सर्व समय सबको प्रतपार पोखत है जल मै थल मै बल मै कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दया नित दोखन देखत है पर देत नहारे दाहत है दुख दोखन का दल दुजन के बल मैं दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभारे पार न पाए सके पदमा पद भेद कते भेद उचारे रोज ही राज बिलोक तराज करो खुरुहान की रोज नटारे कीट पतंग कुरंग भुजंग भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे अंग मेव न भेव लख्यो भ्रम से उपरमाए वेद पुराण कतेब कुरान हसेब थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद स्यों किन श्री पदमा पद पाए आद अनंत अगाद वैक्सो भूत भविख भवान अभय है अंत विहीन नाथ मदाग दुख छिद्र छह है लोगन के करता हरता जल में थल में भरता प्रभ है दीन दयाल दया कर श्री पद सुंदर श्री पदमा पद ये है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त अगे अच्छ है जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दह है काहे को डोलत है तुमरी सुत सुंदर श्री पदमा पद लय है रोगंते अर्सो गंते जल जो गंते बो भांत बचावे शत्रु अनेक चलावत गावत।

जाच भुजंग सो दानव देव भेव तुम्हें सब ही कर ध्याव भूमाकाश पताल रसातल जाच भुजंग सब है सरण्याव पाय सके नहीं पार प्रभाहूं को ने तही ने तह वेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हूँ मिल गायो वेद कतेव न भेद रखे सब हार परे हर हाथ न आयो पाय सके नहीं पार उमा बद सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो ध्यान धरो तेह को मन में जह को अमितोज सब जग छायो वेद पुराण कतेव कुरान अभेद निर्पाण सब बचहारे भेद न पाय सके वन भेद को खेद है अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साग न शोक न संग त्यारे आद अनाद अगाध बेगद वैख जप्यो तिन ही कुलतारे तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे देश फिर कर बेस्त बोधन केस धरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे मुख कारे दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम से धारे त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया छित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के छलैया महासत्रन के साल है दान के दिवैया महामान के बढ़ैया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है युद्ध के जतैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हूँ के मान है ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है पूर्वी न पार पाव हिंगुला हिमालय द्याव गोर कर तेज गुण गावे तेरे नाम है जोगि जोग साधे पौन साधना कि तेक बांधे अरब के अरबी अराध तेरे नाम है फारा के फिरंगी माने कंधारी कोरे से जाने पच्छम के पच्छमी पछाने निज काम है मरण टामंगे ले तेरी मन सो तपस्या करे दृढ़ वै तिलंगे पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली

गोखा गुन गावे चीन मचीन के शीस न्यावे तिब्बति ध्याय दुख देह के दलत है। जिन तोह ध्यायो तिन पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल स्यों फलत है। देव देव दान को सुरेश दान वान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे नदीन साध दीन कहियत है। पाइय न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार पल बछे बहुजत ताहे चिट्ठी की जिंगार पहले ही सुनियत है। किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्णा अवतार किते राम कहियत है। किते शस्त्र राशि किते सूरज प्रकाश किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। किते महादीन किते व्यास।

पूर्ण अवतार निराधार है न पार अवार पाइय न पार पै अपार के बखानी है अद्वय अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी के मानी है। जंत्र हूँ न जात जा की बाप हूँ न मायता की पूर्ण प्रभा के सो छटा के अनमानी है। तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के वो हूँ निको मंत्र है निजंत्र कह के जानी है। तेज हूँ कतार है के राजसी को सार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है। कामना की खान है के साधना किसान है विरक्तता के बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ का रूप है कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनी मन को कारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रोध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है। काम को निंदा है के खूबी को देहंदा है गनी मन का निंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हूँ के काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को बोकत है के वृद्धता की बासी है। जो हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूँ को घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सार है। जान को बचैया है ईमान को दिवैया है जम जाल को कटैया।

राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ जोग है धर यद्रुम छाल के कामना के कार है के बुद्धता को हार है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरा वध छाछ कैसी छतरा नीर छपा कर कैसी छब काल इंद्र के कूल के हंसनी से सिहारु मही रसी हो सन्नाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंधु रूल के पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरसी सुरंगावाद नी के रही झूल के चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चंदगढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसी पुर सी ससी सुरंगावाद नी के सोहियत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हलब्बा ने रहस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्र गिर चांदनी सी चंदगढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंगा।

फरासी फिरंगी फरासी सके तुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गायत है। फकरी कंधारी गोर गखरी कर दे जचारी पौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है। पूरब पलाऊ काम रूप अकमाऊ सर्व ठौर मैं बिराजे जहाँ जहाँ जाइयत है। पूर्ण प्रताप यंत्र मंत्र दया तापी नाथ कीर

काहे रे मंचत वह उदम जा आहिर हर जियो परया साल पथर मह जंत उपाय ताका रजक आगे कर धरिया मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ जन पिता लोक सतबंता कोय न किसकी धरिया सिर सिर रजक संबाहे ठाकुर काहे मन भाव करिया ऊडे ऊड आवे सैकूसा तिस पाछे बचरी छरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन मह सिमरन करिया सब निधान दस अष्ट सिधान

की शरणा जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानख देहुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरै कतै नकाम बल साध संगत भज केवल नाम शरण जाम लाग भव जल तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाओ जप तप

आप हाथ दलहु उबारी सर्व ठौर मोह हो सुहाई दुष्ट दोख ते लहु बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किलबिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छय करता श्री अजदुज भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन

कह चौपई सम सतरै सैस भणी जय अर्ध सैस हुन तीन कह जय भादव सुदी अष्टमी रवारा तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र पखे।

जय जय जय सुरलोक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सवैया छतरी को पूतहां, बामन को नह, क्या तप आवत है जो

0: जय प्रसाद तेरा प्रताप
1: रे मान मोहन तथा को जा
0: जय प्रसाद तेरे कारज पूरे
1: जय जान मन सदा जुड़े
0: जय प्रसाद तो पावे सा
1: रे मन मेरे तथा सोरा
0: जय प्रसाद सबकी गत होए
1: नानक जाप जपे जप सोए
0: आप जपाए जपे सोना
1: आप गाए स्वर गुण गाओ
0: प्रभु कृपा ते होए परगा
1: प्रभु दया ते कमल बिगा
0: प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए
1: प्रभु दया ते मातु तम होए।

0: साध्य संग पाए नाम रतन
1: साध्य संगे को प्रजतन
0: साध्य महिमा भरने कौन परा
1: नानक साध्य स्वभाव ब्रह्माय समान
0: साध्य संग गोचर मिले
1: साध्य संग सदा

0: संग धर्म राय करे सेवा,
1: साध के संग सोबासुदेवा,
0: साधु के संग पाप लाय,
1: साध संग अमृत गुण गाय,
0: साध के संग सरब थान गम,
1: नानक साध के संग सफल जन,
0: साध के संग नहीं किचकार,
1: दर्शन पेटल हो निहार,
0: साध के संग करु खत हरे,
1: साध के संग नरक पर हरे,
0: साध के संग यहुआ सुहेला,
1: साध संग विश्रत हर मेला,
0: जो इच्छे सोई फल पावे,
1: साध के संग ना बिरथा जावे,
0: पार ब्रह्म साध रिज बसे,
1: नानक उदरे सास और से,
0: साध के संग सुनो हर नाव,
1: साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग ना मनते बिसरे,
2: साध सांसा पाने सराय,
1: साध के संग लगे प्रमीठा,
2: साधु का संग घाट का डीठा,
1: साध संग पे आज्ञाकारी,
2: साध संगात भाई हमारे,
1: साध के संग

0: बस कौमन दा
1: प्रसाद भी क्या पर हरे
0: मन की बस ना मन ते डरे
1: इंद्री जीत पान ढोक चरे
0: नाना कोड में देखो ऐसा प्र
1: वैष्णो सो जी सुपर सो प्रसाद
0: जिसन की माया ते होए पिन
1: कर्म कर तो वे न कर्म
0: जिस वैष्णो का निर्मल
1: तरु फल की इच्छा नहीं बचे
0: केवल भगत के तन संरचे
1: अंतर सिमरन गोपाल
0: सब पर होवे कृपा
1: अपने नाम जपावे
0: नानक को वैष्णो

0: करो
1: स्वागत करो
0: हतन के पल्लो पंडार
1: गुरपुरे नमस्कार
0: खेम कुशल सहजानंद।